जी शुक्र दाते दा सानू करना चाहिए। तो आओ फिर एक बड़ा शानदार गीत सुनते हैं, शुक्र दाते आ, ते प्रभ गिल दा गीत गाया होया। तो आओ फिर गीत नू करिए इंजॉय। प्रोग्राम सर्ब रेडियो।

0: 4437275 फंड हमने हमारी छोटी सी फीस शुरू में नहीं लेते सर, काम होने के बाद लेते हैं। फंडिंग किसके खाते में आ रही है? आपके खाते में, तो आपकी ईमानदारी चेक हो रही है। ऑफिस का एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवार्ड हरे डेयरी पे। आप ट्यूजडे आ सकते हैं, मंडे को मैंने बोला स्टाफ को कहता छुट्टी चाहिए, मैंने कहा ले लो भाई इस बार।
1: नहीं ठीक है, ट्यूजडे तो तुसी जरूर तुसी पहुंचो। ते जिहड़े किड्स दी एज तुसी कोई मेंशन कीती है, बच्चियां दी उमर जे फैमिली दे विच ग्रांट या कुछ किवें किवें तुहानूं मिल सकदे, कोई मेंशन कीता है बच्चियां दी एज किन्नी होनी चाहीदी है?
0: 11 साल से नीचे।
1: अच्छा,
0: अगर आप मान के चलिए किसी के 3 बच्चे हैं तो हाँ। मतलब अगर किसी के 3 बच्चे हैं, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी करा, ट्रिकी नहीं है, लाइक फोन पे जब आप एस्टिमेट, हम आपको एस्टिमेट देंगे फोन पे,
1: सिंपल तरीके से। हाँ जी जी जी जी जी,
0: सिंपल तरीके में आपको समझा देता हूँ। आपकी मतलब मान के चले आपकी फीस है कॉलेज की 10,000 एक साल की
1: जी,
0: तो अगर आपके 3 बच्चे हैं
1: जी
0: तो आपकी $3200 पर किड ग्रांट आ रही है, तो मतलब आपकी फीस तो निकली गई बाहर बाहर।
1: अच्छा, $3200 पर किड पर ईयर,
0: बिल्कुल सही बोला, यस बिल्कुल सही पढ़ा आपने।
1: जी जी जी,
0: अब फीस निकल गई, अब आया आपको 2 लाख, तो 2 लाख का 2 लाख आपका ही लोन हो गया।
1: हाँ,
0: कॉलेज की फीस उसमें से कटी नहीं, अगर आपके 3 बच्चे हो गए 11 साल से नीचे। अगर 2 बच्चे हुए तो 6400, 10,000 में से 6400 तो ग्रांट नहीं कवर कर लिया ना, बाकी 3,000, 2 लाख में से 3,000 माइनस करोगे तो कमी, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट?
1: बिल्कुल।
0: 0% पे लोन है, 2.5 साल बाद पेमेंट स्टार्ट होती है। तीसरी बड़ी बात, जब पेमेंट स्टार्ट होती है 2.5 साल बाद, 15 साल में उसे लौटा सकते हैं उस लोन को। चौथी बात, तो पेमेंट स्टार्ट होती है 2.5 साल बाद, शुरुआत आज तक कितना 0, बाद में कितना 2.5% पूरे साल का, तो
1: कुछ भी नहीं है, बिल्कुल
0: कुछ भी नहीं है 2.5%, और बाकी लाइक 15 साल में उतारते हैं उसको, कोई चाबी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: गवर्नमेंट फंडिंग के लिए बैंक नहीं कर रहा। नंबर नोट कर लें आप हमारा, 4372431375, नंबर अगेन 4372431375। मैसेज छोड़ दे, कॉल कर ले, आपको कल, आपको हमारा ऑफिस कल भी लाइक स्टाफ आपको मेरे कांटेक्ट कर लेगा आपको।
1: क्या बात है, बिल्कुल जी, 4372461375 437 264 3175 ते तुसी ज्यादा जानकारी ले सकते हो। यूनी ग्लोबल एडवाइजरी 4372461375। सारांश जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
0: थैंक यू।
1: तेरे बिना ना गुजारा है, नंबर अगला आ रहा है, हैं नहीं बने नहीं टाइम, चलो कोई ना। 418 जी, सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल जी, छोटे वीर की हाल है?
1: बहुत वधिया सर, तुहाडी वड्डे वीर दी कॉल आ गई, होर भी वधिया।
2: बस वधिया, मतलब बंदे नू याद रखना चाहिदा अपना करंट, मतलब वर्तमान
1: जी,
2: भी हुण की कर रहे, भी ना तो बड़ा फ्यूचर नू सोच के, ना बड़ा पास्ट दी चिंता
1: जी,
2: एवं नहीं मन खराब करना चाहिदा।
1: ताही अंग्रेजी विच कहंदे आ प्रेजेंट,
2: बस प्रेजेंट ओही, मैं पंजाबी च कहता, चलो
1: ओ प्रेजेंट ओही गिफ्ट भी हो जांदा ना, प्रेजेंट दो मतलब हो जांदे प्रेजेंट दे।
2: बहुत वधिया गलबात करदे हो तुसीं, ते सोहणा लगदा है, ते सारा मतलब खिड जांदा थोड़ा जिहा, आहा जिहड़ा दिन हुंदा शाम हुंदी है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: हुण ऐ करियो, थोड़ा इक ना साडा गीत मेरा ला दिओ जे तुहाडे कोल टाइम होया तां।
1: हां जी,
2: पर तुसीं ना जे ओह गीत लाया तुसीं कहोगे सारा सुणीए है 2.5 मिंट दा।
1: अच्छा,
2: हां जी, ओहदे च सानूं इह दसूगा प्रेजेंट आला वी ओह ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ,
2: ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ।
1: ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜੀ ਇਹ?
2: ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀ,
1: ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦਾ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਓਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ।
1: ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ,
2: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
2: ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ।
1: ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਬੰਦਾ, ਫਿਲਮ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ।
2: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜੀ?
2: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ।
1: ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
2: ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ,
1: ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।

0: रहा सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु राखिया वड्डी वडियाई नानक करती साच बद सत पाखिया सूरत महला भय कृपा स्वामी मेरे तित सच दरबार सतगुरदास
1: Sunglasses, safety glasses, to visit कीजिए Alpha Optical, Jacuzzi and Williams Parkway में मौजूद Golden Gate Plaza में, Brampton में Alpha Optical, any age, any stage, जी हाँ, उनकी specials देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए, आंखों को चेक करवाने के लिए appointment के लिए 905-400-5993 पर कॉल कीजिए 905-456-2733 Alpha Optical, your vision is your business.
0: करण कारण समर्थ सो पाई सत्य सच्ची सोए नानक प्रभु ते आई है पाई मन तन शीतल होए सूरत मल्ला पंचवा संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुरु पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी पात्र हम

जाने, ताप छोड़ गया परवाने, गुरपुर है रानी, सन सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हो आदत वाला, सात सहज सुख किन मह उपजे, मन हुआ सदा सुखाला, रहाओ, हर हर नाम दियो दारो, तिन सगला रोग दारो, अपनी कृपा धारी, तिन सगली बात समारी, प्रभु अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, गुर का सबर भयो साथी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहेब पुनी गए।

कटपुने पई गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबने थाई रव्या पाद जुगाद जाता बड परताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाए बूठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पात्र हम तब पै रखवाले जिथे किथे तिस है नाले नानक दास खसम पत पाले लावत लावत चरण कमल प्रभ गिरदा ध्याए रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटिया दीनो दान

0: परमपन्नम विष्णु भोजिका
1: सूर्य कवच स्तोत्र
2: अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता ऋणिये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः

0: स्वाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशाम्पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत्।
1: विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूत भृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः।

श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रं तस्य नारायण ऋषि अनंत छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं

0: अच्छा मानो द्वापर वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ठाकुर चुन्नी मेहंदी जागों मिलनी और बारात सिंदूरी तक का सारा सजावट का संपर्क 9 9 9 4 0 0

एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे आते विश्वास कारण कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन 10 लोकेशंस पर सर्व करते ने 2 इन क्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये जिंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही है सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ज़िंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप ज़िंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि

उसका क्या मजा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल पे है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक पर कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खंड को 519-500-1260 किचनर वाटरलू गोल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खंड को। जी हाँ, नसीब खंड आपको बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-500-1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एच के मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एच के मूवर्स। एच के मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो तो आप 416-524-704 पर आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और कोलिजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये हैं आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना।

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंटरमेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड साहब में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम बन रहा होगा 16 घंटा, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। यस यस, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-4704 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने स्वर्धा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोइम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली 2 लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोइम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोइम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली 2 लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs.
1: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ
2: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ESA ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ hirelicense.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca.

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: गुरपुर कृपा का रहा सदा आनंद कर मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करती साच बद सत पाखिया सूरत महला वे कृपा स्वामी मेरे तित सच है दरबार सतगुर दास
1: सनग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5990 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
0: करण कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु ते आई है भाई मन तन शीतल होए मूरख मल्ला पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी पात्र हम प्रभु भय दयाला दुख मिटया सब परवारी

वाला हुआ। काल कृपा प्रभात मेरा क्या हर गोविंद नवा निरुआ रहा। ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई। साथ संगत ते सब पल पाए सतगुर के बल जाई।

ने ताप छोड़ गया परवान, गुरपुरा है रानी सन सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप मुबारक वाला सात सहज सुख किन महे उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहाओ। हर हर नाम दियो दास तिन सगला रोग निदानो, अपनी कृपा तारी तिन सगली बात समारी, प्रभु अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण न बिचारिया, गुर का शब्द भयो साथी तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा तू साहेब पुरी गहरा, जप नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी।

कुने पई गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबने थाई रव्या आद जुगाद जाता वड प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पाए।

गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अखंड कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावन महला पंजवां, साथ पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप बिना से, हर सिमरत किल विक सबना से, अनहद करहो मिले।

कथा गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आ

नारायण ऋषि अनंतम छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम

0: अच्छा मानो द्वापर वेडिंग स्टोर,
1: यहाँ से आपको ठाकुर चुन्नी मेहंदी जागो मिनी और मारा

समोसा एंड फ्री फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन तीन लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन क्रैम्पटन 1850 एल्ड्रन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ली कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है, अभी तो कुछ महीने 4-5 महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा

बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जिंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मज़ा है ना वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की, और आप जिंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो, और आगे बढ़ने के लिए जिए हो, और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं, और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मज़ा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल पे है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को 519-500-46-1260 किचनर वाटरलू गॉल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को। जी हाँ, नसीब खेंड आपको बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-500-46-1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो, तो आप 416-524-704 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है।

तो जरूर गाना सुनाएंगे, पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको कलेक्शन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और कलेक्शन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो, तो आप masterpollutiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड सर में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा प्रोग्राम घंटा, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है तो सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-7004 416-524-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-7004 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मजा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाण स्वर्धा पला है वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोईम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली दो लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी की पोईम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोईम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली दो लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वुल्व्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs. And my

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुनदे हो।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि ठीक ठाक होवोगे जी। जिहड़े दोस्त साढ़े नाल हुणे जुड़े ने उन्हां नूं निघी जी आखदे आ, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल हर एतवार वाले दिन बन जांदा है। 12 तों 1 रामस पंजाबी ते 1 तों 2 सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं तुहाडा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गल्लबात तुसीं प्रोग्राम दे दौरान स्टूडियो च करनी होवे ते 416-233-7368 जां 8297 ते कीती जा सकदी हुंदी है। 416-233-7368 जां फिर 8297 स्टूडियो दे टैलीफोन नंबरस ने। कोई जानकारी, कोई इनफॉर्मेशन, कोई गल्लबात तुसीं करनी होवे ते इन्हां नंबरस नूं डायल करके कह सकदे हुंदे हो। जे 2 बजे तो बाद कोई भी गल्लबात करनी है प्रोग्राम के संबंध में, जां फिर रियल स्टेट संबंधी कोई जानकारी तुहानूं चाहीदी होवे ते फिर साढ़े नाल 416-669-1379 ते संपर्क किया जा सकता है। 416-669-1379 मेरा परसनल टैलीफोन नंबर है। और अज मौसम जिहड़ा काफ़ी स्लिपरी है जी, मीह काफ़ी पै रहा है। आई बिलीव

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली ही लग गई
0: हाँ हाँ
1: तू एवे कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो एक ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना
0: यार किद्दां दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: वो ही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना काम करते होंगे दसी जरा मैंने
0: भावे कुछ भी देता
1: ऑलवेज बच्चे भी देख काम भी देख घर भी देख डॉलर भी देख सारा कुछ देखना है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ
1: भी
0: एक प्रोफेशन है प्रोफेशन मैनू चंगा लगा नहीं
1: हेलो
0: नाले मुक दी गल है भी जे अगले मेरे कोलो ये काम कराउणगे कल नु भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद च अगले पैसे ना देण फिर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा है बाकी गल्लां दी गल्लां
2: ए मेरे नब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं पड़दी बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $50 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तातले नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डे टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी कि तुहाडे अगले एक घंटे विच तुहाडे पैसे की बचत की जाए, चाहे वह ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसिस हो या फिर ग्रैंड फर्नीचर हो। इस वीकेंड ते लॉन्ग वीकेंड है, बहुत वधिया वधिया प्राइज़ तुहानू मिल रही ने, उन्हां दा फायदा जरूर चको। साडे नाल सुल्तान जी स्टूडियो विच जुड़ चुके ने। सुल्तान जी पुराने स्वागत है वीर, की हाल है?
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी वधिया वीकेंड है, वधिया दिन लग रहे हुए ने ते वधिया वधिया प्राइज़ भी देनिया ने। आपां टेलीविजन आले पासे शुरू करदे आ।
1: मेन चीज ए है जी के ए है ब्लैक फ्राइडे इन जुलाई।
0: हां जी,
1: ए वेरी स्पेशल इवेंट हुंदा। एदे च जीई फ्रिजडेयर, फ्रिजडेयर गैलरी एंड प्रोफेशनल दे नाल नाल बॉश जर्मन ब्रांड है, सोनी एंड सैमसंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ते क्योंकि 31 तरीक नूं एक जुलाई मंथ खत्म हो गया, अज 1 अगस्त है, पर लॉन्ग वीकेंड होने करके जेडे कस्टमर इस टाइम एदा एडवांटेज लेना चाहुंदे उन्हां वास्ते ए बेस्ट डील है, लास्ट कॉल है के ब्लैक फ्राइडे बॉक्सिंग वीक प्राइसिस इन जुलाई तुहानू मिलनगियां। जदों तुसी टीवी सैक्शन दी गल कीती है ते देखो तुसी अज तक ना सुनिया होना, ना मैं भी अज तक वेचिया, ना कस्टमर ने लाए होने हैं। 50 इंच टीवी 299,
0: 50 इंच टेलीविजन सिर्फ ते सिर्फ 299,
1: 55 इंच टीवी 399
0: दा 55 इंच टीवी,
1: 65 इंच टीवी
0: 75 इंच
1: कदी किसी ने लिया, फैक्ट्री सील्ड ब्रांड न्यू डब्बे च बंद हो भी 75 इंच 699।
0: लो जी 75 इंच 699 दा,
1: 65 इंच 599, 55 इंच 399, 50 इंच 299। ते पेमेंट भी 6 महीने च करनी।
0: कोई अच्छा जेडी पेमेंट 6 महीने च करनी है, अज ले जाओ, कल नू ले जाओ, जिदन लेके जाओगे उदो 6 महीने गणने है। ते ब्याज कोई नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, टेलीविजन तुहाडे घरे लग्या होएगा।
1: ते 6 महीने च पे करोगे, फ्री डिलीवरी मिल जानी है, 1 साल दी पार्ट्स एंड लेबर वारंटी है, 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवी है, गूगल फीचर्स दे नाल, एदे च तुहानू ऐप स्टोर मिलेगा, अनलिमिटेड ऐप्स तुसी डाउनलोड कर सकदे हो। एदे लई पहुंचना है तुसी brampton appliances.com साडी वैबसाइट सर्च करनी है, या तुसी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते पहुंचना है, या फिर तुसी टिकटॉक ते ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ब्रैम्पटन टीवी APP, ब्रैम्पटन टीवी ऐप सानू फॉलो करना है ते उत्थे देखना है कि अज कैसियां स्पेशल प्रमोशन जेड़ियां वो दित्तियां जा रही हैं। ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते 905-450-2828। ते ए ना सोचियो कि इर्च ता 85 इंच बोलिया ही नहीं, इर्च ता 98 इंच बोलिया ही नहीं, 85 इंच ते भी $700 दी सेविंग है।
0: बोले
1: जे सोनी ब्रेविया मॉडल लेना है ते सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा।
0: अच्छा
1: ते ओ भी $2200 तो 1599 दा,
0: 85 इंच। ठीक है,
1: ते जे तुसी सैमसंग लेना है ओ भी मिनी LED मिलेगा, लेटेस्ट 2026 दा नवा मॉडल, ओ भी 1599 च। $700 तुसी 85 इंच ते भी सेव करने हैं। ते जे 98 इंच लेना है $1500 दी सेविंग,
0: 1500
1: दी सेविंग है, $3500 आला 98 इंच 1999 भी 6 महीने च पे करना।
0: समान कोई ले लो ब्रैम्पटन टीवी प्लांट से, तो चाहे फ्रिज, फ्रिजा ने भी गल करते हैं, उथे मसाज वाली चेयर है उदी गल करते हैं, सारिया गल करते हैं, पैसा जिहड़ा समान लेना 6 महीने दे सकते हो, तुहाडे कोले चॉइस आ, ब्याज कोई नहीं लगेगा। एड्रेस है 801
1: होल्ड करा दो, फिर शोरूम च आके चेक करके कंपेयर करके फिर डिलीवरी स्केड्यूल।

0: 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
0: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
0: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 9054502828 9054502828
3: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है
4: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो डिविडेंड दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500
5: Are you ready?
6: टिक्का जंक्शन लेके आए ने स्पेशल ऑफर्स फॉर फेस्टिव सीजन खास फेस्टिव सीजन लाई कैटरिंग स्टार्ट सिर्फ 999 च
7: जिस विच मिलनगियां 8 आइटम्स ए लाइव कैटरिंग भी कर देने
6: फंक्शन वड्डा होवे या छोटा कैटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे
7: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी आ वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस ते
6: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनिया खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन
7: कॉल 6474294040
6: 6474294040 टिक्का जंक्शन खुशियां दा सेलिब्रेशन
8: और एक बार फिर तुहानू लेके चलदे हां ग्रैंड फर्नीचर ते सुख साहब साडे नाल जुड़ चुके ने जनाबे अली
9: बहुत शुक्रिया धन्यवाद देव जी बिल्कुल ग्रैंड होम फर्नीचर दा मैसेज दे रहे हैं जी परिवारां तक लॉन्ग वीकेंड स्पेशल जेडियां प्राइसेस फर्नीचर दे उपर मिल रही हां सो परिवारां ने किसी भी तरह दी फर्नीचर दी बाइंग कर रही हां किंग साइज दे हाइड्रोलिक बेडरूम सेट चाहिए ने सोफा सेट चाहिए आ डाइनिंग टेबल चाहिए आ तां लोएस्ट प्राइस मिल रही हां लॉन्ग वीकेंड दे उपर ते नाल दी नाल तोहफे भी परिवारां नूं मिलने आ ते नाल जिन्हां परिवारां ने किंग साइज दा बेडरूम सेट लेना मास्टर बेडरूम दे लई किंग साइज दा बेड ग्रे कलर दा लेकर फ्रीज दा बेडरूम सेट हेडबोर्ड दे विच एलईडी लाइटां हाइड्रोलिक स्टोरेज ड्रेसर मिरर नाल साइड टेबल सो किंग साइज दा कंप्लीट बेडरूम सेट हाइड्रोलिक स्टोरेज नाल किंग बेड हाइड्रोलिक स्टोरेज ड्रेसर मिरर नाल साइड टेबल जिहदी रेगुलर कीमत $3500 सी लॉन्ग वीकेंड स्पेशल $1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਟੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਸੋਫਾ ਕਮ ਬੈਡ ਸੋਫਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੈਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $1000 ਸੀ $499 ਦਾ ਸੋਫਾ ਕਮ ਬੈਡ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਸਟੋਰ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਡੈਰੀ ਟੋਮਗਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6472600 647-262-0000 ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਭਾਜੀ
8: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ

0: इसी तरह की लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते हैं। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3081 ते 416-457-3381 ते।
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नू कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: first year second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015।
1: This is AM 530 CA